श्रोताओं, अभी आपने संवेद स्वरों में ये मात्र वंदना सुना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जिया लाल व साथियों की आवाजों में ये आरती।

श्रोताओं, अभी आपने साधना सरगम व साथियों की आवाज़ों में भारत आचार्य की लिखी रचना सुनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत है नरेंद्र चंचल के स्वर में ये भजन। रचनाकार है रामलाल फनी।

0: श्रोताओं, अभी आप अनूप जलोटा की आवाज में इस भजन को सुन रहे थे। अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें लोबिया की खेती के संदर्भ में। लोबिया की खेती हमारे द्वीपों की जलवायु में पूरे साल आसानी से की जा सकती है, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर सूखे का। द्वीप समूह में जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए लोबिया वेजिटेबल मीट का काम करती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावे लोबिया में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमिन, रिबोफ्लाविन तथा विटामिन सी आदि भी पाए जाते हैं। फसल चक्र अपनाने में लोबिया का महत्वपूर्ण योगदान है तथा खेत की उर्वरकता को बढ़ाने में भी इसकी भागीदारी रहती है। ये फसल हरी खाद का भी काम करती है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को रूट नोड्यूल्स द्वारा पौधों को प्रदान करती है, जो कि रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम करने या उनके खरीदने के बिल को कम करने में मदद करती है। हरी फलियां सब्जियों के काम आती है और सूखे दाने स्वादिष्ट दाल में तथा हरा चारा पशुओं के काम आता है। हमारे द्वीपों में लोबिया की अर्का गरिमा, क्रीपर लॉन्ग, सेलेक्शन 2-6-3, पूसा दो फसली, पूसा कोमल, पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी आदि किस्मों को हम आसानी से उगा सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं।

0: जहाँ तक मिट्टी और जलवायु का सवाल है, गर्म आर्द्र जलवायु इसके लिए बहुत अच्छी होती है जो कि हमारे इन द्वीपों में पाई जाती है। जल निकास युक्त कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी का हमें चयन करना चाहिए। बीज की मात्रा जातियों तथा दूरी के ऊपर निर्भर करती है, फिर भी औसतन 18 से 20 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करा लिया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि इससे पैदावार बढ़ जाती है। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से खोदकर या जोतकर तैयार कर लेना चाहिए और 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद को बीज बोने से पहले ही मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। पौधों की दूरी सुविधा अनुसार रखनी चाहिए, फिर भी लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जा सकता है। बहुत लंबे समय तक अगर सूखे का मौसम है तो सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। गोबर की खाद के अलावा यदि उर्वरक उपलब्ध हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जब जब खेत में खरपतवार नजर आए उनको तुरंत निकाल देना चाहिए और बोने के करीब 25 दिन बाद गुड़ाई करके हल्का सा मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। लोबिया की फसल में अगर आप वृद्धि नियामकों यानी पादप हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं तो इससे भी फायदा होगा। 50 से 200 पीपीएम मैलिक हाइड्राजाइड फूल आने से तुरंत पहले अगर छिड़काव करें तो इससे फलियों की पैदावार में वृद्धि होती है। इसी तरह IBA का 250 मिलीग्राम 1 लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से भी पैदावार में वृद्धि देखी गई है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।

0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में

0: वे उन्हीं टिकटों के साथ एमवी सेंटिनल की यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। एमवी सेंटिनल के स्थान पर अब एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 23 मई को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान 24 मई को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी सेंटिनल के लिए टिकट धारकों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं टिकटों के साथ एमवी भारत सीमा पर यात्रा कर सकते हैं। एमवी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 20 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 21 मई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 22 मई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान 23 मई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी स्ट्रीट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 20 मई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड व स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। श्रोताओं अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: नमस्कार श्रोताओं, जोश जीत और उम्मीद लेकर इंद्रधनुष कार्यक्रम के इस शानदार पेशकश में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज का हमारा खास विषय है खेल, जहां मैदान में सिर्फ खिलाड़ी नहीं उतरते, उतरता है हौसला, उतरती है मेहनत और उतरता है वो सपना जिसे पूरा करने के लिए पसीना भी मुस्कुराता है। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक जज्बा है जो हार में सबक और जीत में विनम्रता सिखाता है। जिंदगी की दौड़ में भागते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन भी एक खेल की तरह है। कभी जीत की खुशी तो कभी हार का दर्द, कभी तालियां तो कभी संघर्ष। जैसे मैदान में खिलाड़ी हर दिन नई चुनौती का सामना करता है, जीवन भी हमें हर मोड़ पर चुनौती देकर परखता है।

तरह खेल के मैदान में खिलाड़ियों को उनका हौसला मजबूत बनाता है, उसी तरह जिंदगी की हर परिस्थिति में हमारा हौसला ही हमें मजबूत बनाती है। एक गेंद, एक पॉइंट मैच बदल सकती है और जिंदगी में एक फैसला पूरी कहानी। खेल हो या फिर जीवन, हार कभी अंत नहीं होती बल्कि वो जीत की शुरुआत होती है। एक खिलाड़ी हार कर भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगला मैच या अगली बाजी अभी बाकी है। और यही बात जिंदगी भी सिखाती है कि मुश्किलों के बाद आसानियां हमारी राह देख रही है।

खेल जीवन की कला है। खेल हमें सिखाता है संघर्ष करना, संभलना और फिर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना। ये सिखाता है अनुशासन, समय की कीमत और मेहनत का असली मतलब, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल समय में लड़ने और डटे रहने की ताकत। खेल सिर्फ मजबूत शरीर नहीं देता, बल्कि मजबूत सोच और बड़ा दिल भी देता है।

0: खेल का मैदान हो या फिर जीवन की डगर, खिलाड़ी वही महान बनता है जो हालात से नहीं अपने हौसलों से आगे बढ़ता है। इसी विचार के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नई प्रेरणा भरे विषय के साथ। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आप खेल शीर्षक पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी फातिमा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे की 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 243वीं कड़ी। गायक कलाकार है साजन मिश्रा और साथी।

अत्र ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्र ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्यलोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

श्रोताओं, अभी आप साजन मिश्रा, राजन मिश्रा और साथियों की आवाज़ों में रामचरितमानस गान की 243वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशगान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत चंद देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं को ये सूचित किया जाता है कि द्वीपों के एक या दो स्थानों पर आज और कल 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने, साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, अथवा समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए मछुआरों को 22 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7 बजे जनसूचनाएं, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। और इसी समय आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में खेल जगत कार्यक्रम के तहत आप ब्रिस्क वॉकिंग विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे सुरेश वाटकर और शारदा। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने सुना जा सकता है 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में नामगिरी पिट्टे कृष्णन का नादस्वरम प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का आनंद लीजिए 10:00। दिन के 11:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCRT। चित्र गीत फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सुनिए 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालालोकम। गीत व गजलों का लुत्फ लीजिए कार्यक्रम सुगम संगीत में दोपहर 1:10 पर, जिसमें फनकार होंगे सुमेश कुमार और पिनाज मसानी। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर सुनिए नॉनस्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर सुनवाया जाएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा विशेष गायक द्वारा गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। सुगम संगीत में 4:30 पर चंदन दास को आप सुनेंगे। 4:40 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। बाहरों की शाम फिल्म

गीतों के इस कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे शाम 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 5 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगहलीर उलगम। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम के तहत आप फिल्मी गीत सुनेंगे त्रिधरा। किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा शाम में बाहर। संध्या 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुनिए संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में आप चंद फिल्मी गीत सुनेंगे। युववाणी के तहत संध्या 7:30 पर देश की शान कार्यक्रम के अंतर्गत आप मशहूर गीतकार मजरू सुल्तान पूरी के बारे में सुनेंगे। इसके अतिरिक्त विश्व फेयर प्ले दिवस व हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा की जाएगी। रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार व गौरवगान सुनिए रात्रि 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश आते हैं सुना जा सकता है रात्रि 10 बजे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और इसी बीच रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इसके अंतर्गत सबसे पहले सुनिए मौसम की जानकारी। पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और इसके आसपास के इलाकों में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:55 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37। लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। यही विमान श्री विजयपुरम से आज दिन में 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी सुन रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज सवेरे 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी, और इसी समय आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में खेल जगत कार्यक्रम के तहत आप ब्रिस्क वॉकिंग विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर कलाकार होंगे सुरेश वाटकर और शारदा। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने सुना जा सकता है सवेरे 9:00। इसके अलावा दिन के 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल और 11:30 पर चित्रगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन कर जिला अभिलेख सर्वेक्षण समिति का नाम दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ओर से समुद्री सुरक्षा और तटीय पुलिसिंग पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य संपन्न, अब जनसंख्या गणना की तैयारियां शुरू और द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन कर उप समितियों सहित इसे जिला अभिलेख सर्वेक्षण समिति के नाम से गठित किया है। ये समिति तीनों जिलों के लिए गठित की गई है। इन उप समितियों का नेतृत्व प्रशासन के संबंधित जिला उपायुक्तों द्वारा किया जाएगा। उप समिति का मुख्य कार्य द्वीप समूह के इतिहास से संबंधित अभिलेखों, दस्तावेजों, तस्वीरों, पांडुलिपियों आदि का सर्वेक्षण करना और उनकी सूची तैयार करना है। जिन व्यक्तियों, निजी संस्थानों के पास ऐसी जानकारियां उपलब्ध हैं, वे प्रशासन को इनकी मूल प्रतियां या फोटोकॉपी अभिलेखागार सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से या फोन नंबर 2306 पर संपर्क कर जमा कर सकते हैं। फोटोकॉपी करवाने में यदि कोई खर्च आता है तो उसका वहन प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या संस्थान अपने अभिलेखों और दस्तावेजों को अभिलेखागार के साथ साझा करेंगे, उन्हें क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति द्वारा उचित रूप से मान्यता दी जाएगी। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रशासन और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग भारत सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर के लिए वर्चुअली भाग लिया। ये पहल सुरक्षित और टिकाऊ ग्रामीण पेयजल, मजबूत निगरानी, स्रोत की स्थिरता, जल गुणवत्ता की निगरानी, डिजिटल शासन और सामुदायिक स्वामित्व पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य द्वीप समूह की हर ग्राम पंचायत के लिए हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करना है। ये सभा माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुई। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने लोक निवास में अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा मैरिन हिल सर्किट हाउस के प्रस्तावित पुनर्विकास के संबंध में प्रस्तुति की समीक्षा की, जिसकी योजना वैश्विक

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव और अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उधर द्वीपों के उपराज्यपाल ने लोक निवास में अनिटको द्वारा दी गई एक और प्रस्तुति की समीक्षा की। ये प्रस्तुति द्वीप विकास एजेंसी के तहत PPP मोड में विकसित किए जा रहे 5 सितारा रिजॉर्ट परियोजनाओं से संबंधित थी, जो श्री विजयपुरम, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और एविस आइलैंड में बन रहे हैं। इस दौरान रंगाचांग में विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स और मनोरंजन स्थल के विकास पर भी चर्चा हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान 22 मई तक समुद्री सुरक्षा और तटीय पुलिसिंग पर दूसरा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंध एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इस बार के संस्करण को प्रतिक्रिया और सुझावों को शामिल कर फिर से डिजाइन किया गया है, जिससे ये अधिक व्यवहारिक, इंटरैक्टिव और परिणाम उन्मुख बन गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिंधु पिल्लई ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में समुद्री सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक हरगोविंद सिंह धालीवाल, पुलिस कर्मचारी तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और तटीय पुलिसिंग के क्षेत्र में राजपत्रित अधिकारियों की निर्णय लेने और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु, CISF, IRBN, मत्स्य विभाग, बंदरगाह प्रबंधन बोर्ड और अंडमान निकोबार पुलिस तथा प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर एकत्रित कर समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान करने और अंतर एजेंसी समन्वय को बेहतर बनाने के लिए एक साझा मंच प्रदान कर रही है। इसमें समुद्री सुरक्षा की अवधारणाओं, तटीय सुरक्षा संरचना, समुद्री कानूनों, निगरानी प्रणालियों, अवैध शिकार रोधी अभियानों, भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन भूमिकाओं और खोज एवं बचाव तंत्र पर विस्तृत सत्र शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जनगणना और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह में जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस जनगणना को डिजिटल माध्यम, निगरानी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके पूरा किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से प्राप्त व्यापक डेटा भविष्य के बुनियादी ढांचा विकास और पूरे द्वीप समूह में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक आधार का काम करेगा। मकान सूचीकरण के पूरा होने के बाद अब जनसंख्या गणना की तैयारियां शुरू होंगी, जिसे फरवरी 2027 में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर 24 मई तक तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 मई तक समुद्र में ना जाएं। श्री विजयपुरम बंदरगाह पर खतरे का संकेत नंबर 3 लगा दिया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से कल पुलिस लाइन के ड्रिल सभागार में उड़ान समर कैंप का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य द्वीपों के बच्चों और युवाओं के बीच खेल, शारीरिक फिटनेस, रचनात्मकता, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नियति मित्तल कश्यप मुख्य अतिथि थीं। अपने संबोधन में उन्होंने खेल, अनुशासन और कौशल विकास के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को कैंप की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और पुलिस द्वारा प्रदान किए गए इस अवसर का सार्थक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समर कैंप में एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, योग और ध्यान, मुक्केबाजी, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्केचिंग और अन्य व्यक्तित्व विकास कौशल

विकास और करियर मार्गदर्शन गतिविधियां शामिल हैं। इस सत्र में लगभग 220 छात्र भाग ले रहे हैं। ये कैंप 17 जून तक पुलिस लाइन, नेताजी स्टेडियम और मैरिन डॉकयार्ड सहित विभिन्न स्थानों पर जारी रहेगा। समग्र शिक्षा केंद्र और इनर व्हील क्लब की ओर से मातृ दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माताओं, बच्चों, कर्मचारियों और अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की माताओं की असाधारण यात्रा का सम्मान करना, साथ ही परिवारों के बीच भावनात्मक जुड़ाव, समावेश, सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, मनोरंजक खेल, एक आनंदमय रैंप वॉक और पेंटिंग सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम का समापन विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन कर जिला अभिलेख सर्वेक्षण समिति का नाम दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ओर से समुद्री सुरक्षा और तटीय पुलिसिंग पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य संपन्न। अब जनसंख्या गणना की तैयारियां शुरू। और द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम देश रागिनी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, देशभक्ति की बात हो और शहीदों की कुर्बानी का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये शब्द सुनते ही दिल में देश प्रेम की आग जल उठती है। बसंती चोला यहाँ वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो आइए आज फिर उन वीरों को सलाम करते हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।

श्रोताओं, हर भारतीय के दिलों में देश के लिए सम्मान, अपनापन और गर्व की भावना छुपी है। जब हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, तब उनके दिल की आवाज़ शायद कुछ ऐसी ही होती है।

श्रोताओं, मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली, सैनिकों का साहस और माँ की दुआओं से मिलकर बनता है हमारा देश। एक ऐसा देश जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रंग हैं, लेकिन दिल सबका एक साथ धड़कता है। जब भी हम अपने वतन को याद करते हैं, दिल से बस यही आवाज़ निकलती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज इस अनमोल वचन के साथ। यदि आप सही हैं और फिर भी लोग आप पर आरोप लगाते हैं, तो सत्य और धैर्य के साथ बने रहिए, क्योंकि समय सबका साथ नहीं देता, लेकिन सत्य और अच्छे कार्य हमेशा आपका साथ देते हैं। नमस्कार श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज विश्व फेयर प्ले दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हमें खेलों और जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान और निष्पक्षता की सीख देता है। फेयर प्ले का मतलब होता है नियमों का पालन करते हुए, बिना धोखा दिए और दूसरों का सम्मान करते हुए खेलना या काम करना। यह दिवस केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल, खेल मैदान, दफ्तर या रोजमर्रा की जिंदगी, हर जगह निष्पक्ष व्यवहार समाज को बेहतर बनाता है।

0: श्रोताओं, अभी आप संजू फिल्म का ये गीत सुन रहे थे जिसे गाया था सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने। इस गीत को सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं खेल जगत कार्यक्रम के तहत ब्रिस्क वॉकिंग विषय पर ये जानकारी।
1: नमस्कार, खेल जगत के आज के संत में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज कुछ बातें पैदल चलने या वॉकिंग के संदर्भ में। श्रोताओं, आज समाज में कई ऐसी बीमारियां पैर जमा चुकी हैं जिन्हें मोटे तौर पर लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। समाज का कोई भी तबका इन बीमारियों

बीमारियों से अछूता नहीं है और अब ये बीमारियां जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। डायबिटीज, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि बीमारियां हमारी जीवन शैली और व्यायाम में कमी का नतीजा हैं। व्यायाम वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं। पैदल चलना या वॉकिंग व्यायाम का सबसे सरल तरीका है। ये एक ऐसा एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे हर कोई कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती जागरूकता के चलते सुबह और शाम कई लोग पैदल चलते देखे जा सकते हैं। लेकिन व्यायाम के लिए कैसे चलना चाहिए? क्या महज टहलना व्यायाम हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि तेज चलने या ब्रिस्क वॉकिंग से ही वांछित फायदा हो सकता है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है एक घंटे में 5 किलोमीटर या 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलना। हालांकि एकदम तंदुरुस्त लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। एक घंटे में 6.5 किलोमीटर चलने से ही ऐसे लोग मॉडरेटली इंटेंस एक्सरसाइज जोन में आ सकते हैं। तेज चलने की गति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मोटे तौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आपको इतना तेज चलना चाहिए कि आपकी सांसें सामान्य से तेज चलें। आप ठीक से बात तो कर सकें पर स्थिति में आप गाना ना गा पाएं। CDC के अनुसार मध्यम व्यायाम की स्थिति में हृदय की गति सामान्य से 50-70% तक ज्यादा हो सकती है। आइए देखें वॉकिंग के क्या क्या संभावित फायदे हैं। पैदल चलने से हृदय संबंधी रोगों से हम बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। इस तरह के व्यायाम से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है जो कि हृदय संबंधी रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। पैदल चलने से हृदय, फेफड़े व मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक मजबूत हृदय से हृदय गति बढ़ती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक खून पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ब्रिस्क वॉकिंग से आप प्रतिदिन 200 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं और इस तरह शरीर में फैट कम होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से पैदल चलने से आपका शारीरिक वजन सामान्य रहता है जिससे बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI ठीक रहता है और रक्तचाप सामान्य होता है। पैदल चलने से मांसपेशियों में ज्यादा गति होती है, फलस्वरूप मसल सेल्स द्वारा ज्यादा ग्लूकोज का अवशोषण होता है जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। शोधों से यह बात सामने आई है कि ब्रिस्क वॉकिंग से आहार में मौजूद कैंसर कारक अवयवों को आंतों के संपर्क में आने का कम समय मिलता है जिससे कॉलोन कैंसर का खतरा शुरू से ही कम हो जाता है। नियमित रूप से चलने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी हम तंदुरुस्त रहते हैं। इससे हम तनाव कम महसूस करते हैं। पैदल चलने से हमारे मस्तिष्क तक खून का प्रवाह और फलस्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होती है जिससे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों में ये डेमेंशिया और अल्जाइमर्स आदि बीमारियों के प्रबंधन में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। किसी भी कार्य से वांछित परिणाम हमें तभी मिलते हैं जब उसे सही ढंग से किया जाए। पैदल तो हम सभी चलते हैं तो इसमें सही तरीके का क्या सवाल है? जी हाँ, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर की ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करना है। अगर आप हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप आदि के मरीज हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सुरक्षित व्यायाम की हद क्या है। आप कितनी तेजी से चल सकते हैं, कितनी देर चल सकते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है। कपड़े ऐसे पहनें जिसमें आप आराम महसूस करें। बहुत सारे लोग चप्पल पहनकर वॉकिंग करते हैं जो कि गलत है। ब्रिस्क वॉकिंग जूते पहनकर ही करने चाहिए और जूते भी ऐसे हों जो हल्के तथा आरामदायक हो। आप आमतौर पर जो जूते पहनते हैं उससे एक नंबर बड़े जूते का प्रयोग वॉकिंग के लिए करें तो बेहतर होगा। जूतों के सोल बहुत कड़े नहीं होने चाहिए। अक्सर हम तेज चलने की कोशिश करते हैं तो लंबे लंबे कदम रखते हैं जो कि सही तरीका नहीं है। कदम छोटे छोटे और तेज होने चाहिए।

चलते वक्त जब आपके कदम जमीन पर पड़ते हैं तो एक रोलिंग मोशन होना चाहिए, यानी पैर की एड़ी पहले जमीन पर पड़नी चाहिए और फिर अगला हिस्सा यानी टो। अगर आपके पैर सपाट जमीन पर पड़ेंगे तो इससे आपके शिन और घुटनों में दर्द होगा। चलते वक्त दोनों हाथ भी पैरों के साथ आगे पीछे होने चाहिए, लेकिन अगर आप अपने हाथों को सीधे आगे पीछे ले जाएंगे तो इससे आपके चलने की गति प्रभावित होगी। सही तरीका यह है कि आप चलते वक्त अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल पर मोड़िए और आगे पीछे नेचुरल तरीके से स्विंग कीजिए। चलते वक्त सिर का पोस्चर भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोग सिर झुकाकर अपने पैरों को देखते हुए चलते हैं, जो कि गलत तरीका है। चलते वक्त सिर हमेशा जमीन के समानांतर होना चाहिए और आपकी आंख आगे 10 से 20 फीट तक फोकस होने चाहिए। सिर के सही पोजीशन से आप अपने बैक, गले और कंधों में होने वाले संभावित समस्याओं को रोक सकते हैं। सामने की ओर 5 डिग्री से ज्यादा झुककर चलना भी वॉकिंग का गलत तरीका है। सामने या पीछे की ओर झुककर चलने से बैक पेन हो

0: को सीधे आगे पीछे ले जाएंगे तो इससे आपके चलने की गति प्रभावित होगी। सही तरीका यह है कि आप चलते वक्त अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल पर मोड़िए और आगे पीछे नेचुरल तरीके से स्विंग कीजिए। चलते वक्त सिर का पोस्चर भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोग सिर झुकाकर अपने पैरों को देखते हुए चलते हैं, जो कि गलत तरीका है। चलते वक्त सिर हमेशा जमीन के समानांतर होना चाहिए और आपकी आंख आगे 10 से 20 फीट तक फोकस होने चाहिए। सिर के सही पोजीशन से आप अपने बैक, गले और कंधों में होने वाले संभावित समस्याओं को रोक सकते हैं। सामने की ओर 5 डिग्री से ज्यादा झुककर चलना भी वॉकिंग का गलत तरीका है। सामने या पीछे की ओर झुककर चलने से बैक पेन हो सकता है। चलते वक्त आपका पोस्चर बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। चलने से पहले, चलते वक्त और चलने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीना भी समस्या पैदा कर सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करने से 10 मिनट पहले एक ग्लास पानी पी लेना उचित रहता है। मौसम और कितनी देर आप चलते हैं, इसके आधार पर चलते वक्त भी अगर पानी की जरूरत हो तो पी लेना चाहिए। वॉकिंग समाप्त करने के बाद एक या दो ग्लास पानी पी लेना ठीक रहता है। और हाँ, आखिरी सलाह, ओवरडू मत कीजिए। अगर आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन लग रहा है, जोड़ों और शरीर में काफी दर्द हो रहा है, तो सावधान, आप अपनी क्षमता की सीमा को लांघ रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ बातें पैदल चलने या ब्रिस्क वॉकिंग के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि व्यायाम का ये तरीका आप जरूर अपनाएंगे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इस काम को सही ढंग से करेंगे ताकि वांछित फायदा हो सके। खेल जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिस्क वॉकिंग विषय पर ये पूर्व प्रसारित जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जानकारी दे रहे थे शिबू जॉर्ज। श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

श्रोता, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं केके के स्वर में ये गीत। कौसर मुनीर की रचना है और तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने जीनियस फिल्म का ये गीत सुना। कुमार के बोल को सुर मिठाला था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से। विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान को कुमार का लिखा हुआ गीत है और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

सुनिधि चौहान और विशाल मिश्रा के गाए मुन्ना माइकल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान अब यहीं पर समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रसारित किए जाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने

0: भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते

0: विश्वजीत सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी पांच शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी पांच शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne

श्रोता, सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत आज इस कार्यक्रम में कलाकार है सुरेश वाटकर और शारदा। कार्यक्रम में पहले पेश है सुरेश वाटकर की आवाज में ये गजल।

सुरेश वाटकर को सुनने के बाद श्रोताओं आइए अब सुनते हैं शारदा की आवाज़ में ये गीत। गीत लिखा है KL परदेसी ने।

सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में नामगिरी पेट्टई कृष्णन का कर्नाटक शैली में नाद स्वरम वादन प्रसारित किया जाएगा।

यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी ने। आनंद बख्शी की लिखी रचना है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने।

0: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
1: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।

0: श्रोताओं, अभी आप हीरा पन्ना फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी और संगीत दिया था आरटी बर्मन ने।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the

0: modern techie, new age Baleno, and get amazing benefits, easy finance options, and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: श्रोताओं, अब पेश है गुलशन बावरा का लिखा एवं आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने।

भोसले ने और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं फकीरा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। रविंद्र जैन का संगीत है और गीत लिखा है रविंद्र जैन ने।

किशोर कुमार व लता मंगेशकर के गाए फकीरा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको डॉक्टर नामगिरी पेट्टई कृष्णन का कर्नाटक शैली में नादस्वरम वादन सुनवा रहे हैं। पहले लीजिए, सुनिए इनका नादस्वरम पर बजाया राग अभोगी, जो रूपकम ताल में निबद्ध है। कृति NS रामचंद्रन की है।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए सुनिए राग मन मनोरंजनी, जो आदि ताल में निबद्ध है कृति त्याग राजा की है।

0: करने का अवसर दिया। कुछ बेमिसाल
1: किस्से मैंने पढ़ा जाने के लिए। अभी आप नामगिरी पेट्टई कृष्णन का कर्नाटक शैली में नादस्वरम वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत होता है कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं झूठा ही सही फिल्म से, जिसे गाया है सोनू निगम ने और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उषा उथुप और रेखा भारद्वाज की आवाज़ों में। गीतकार है गुलजार और अदिति सिंह शर्मा। फिल्म का नाम है सात खून माफ़।

अब्बास जिलानी के संगीत निर्देशन में तैयार जाना फिल्म के इस गीत को गाया है शान और श्रेया घोषाल ने, बोल शाहरुख सुल्तान के लिखे हैं।

0: पेशेंट्स नॉर्मल है जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है।
1: चांद के पार चलो फिल्म के इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। बोल ऋषि आज़ाद के हैं और धुन तैयार की है विष्णु नारायण ने।

0: खा सब रहे हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर
1: लाभ जंजुआ की आवाज में हैट्रिक फिल्म का ये गीत, संगीतकार है प्रीतम।

0: सुनवा रही हैं।
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे।
2: जहर फिल्म का ये गीत जिसे गाया है आतिफ असलम और साथियों ने और इसे संगीत से सजाया है मिथुन और नरेश शर्मा ने।

गेम फिल्म का ये गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल और साथियों ने, बोल जावेद अख्तर के हैं।

अभिजीत अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों में शादी नंबर 1 फिल्म का ये गीत। गीतकार है अकील और रचनाकार है जबीर अहमद।

0: फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है।
1: फिल्म आवारापन से सुनिए अगला गीत जिसे गाया है सुजैन डी मोलो ने, बोल सईद कादरी के हैं और संगीत प्रीतम का है।

0: आनंद राज आनंद और मिक्का सिंह की आवाज़ों में आइए सुने डबल धमाल फिल्म का ये गीत।
1: Yeah! Satisfied! We're winners! Give one reason to come alive!

0: आनंद राज आनंद और मीका सिंह की आवाज़ों में आइए सुने डबल धमाल फिल्म का ये गीत।
1: Yeah! Satisfied! We're winners! Give one reason to come alive!

0: चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है।
1: राम संपत के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को गाया है कीर्ति संगथिया और इसके बोल लिखे हैं मुन्ना धीमन ने। फिल्म का नाम है डली बली।

0: हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं।
1: बिन बुलाए बाराती फिल्म के इस गीत को गाया है आनंद राज आनंद ने, गीतकार है सत्य प्रकाश।

0: करना है रोज का कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना।
1: चांद के पार चलो फिल्म के इस गीत को गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण ने, बोल ऋषि आज़ाद के हैं और धुन तैयार की है विष्णु नारायण ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत होता है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1287वीं कड़ी।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओ जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों

0: को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृष जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
1: जी।
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे।

0: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगा।

0: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको, रुको। मैं, अरे मैं,
1: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
0: हा?
1: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
0: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
1: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
2: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
1: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
0: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
8: नहीं कटने देंगे।
9: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने

0: जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ गौरमा,
5: सब तैयार हैं।
4: हम किसी
5: भी हाल में जंगल कटने
4: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
7: अरे
8: क्या कर रहे हो?
9: मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू, मारो पर।
7: अरे भाई कौन है? रुको, हम चल जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
7: अरे कहां
9: से? तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक
9: जाएंगे। तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी

0: प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1227वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत होता है कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिलाए से। गायक कलाकार है अलका याग्निक और बोल समीर अनजान के है और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

प्रीतम चक्रवर्ती के संगीत निर्देशन में तैयार शरशाद कामिल के लिखे गीत को स्वर दिया है मीका सिंह ने। फिल्म का नाम है जब भी मेट।

फिल्म जोधा अकबर से सुनिए अगला गीत, जिसे गाया है जावेद अली ने, बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत AR रहमान का है।

कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत है। तड़ीपाल फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अब सुनिए लुटेरे फिल्म का ये गीत। बोल धर्मेश दर्शन के हैं जिसे संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: प्रसारित करेंगे।
1: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब पेश है तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

ये अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन

0: आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway business

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में सोमेश कुमार और पिनाज मसामी का गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। पहला फरमाइश हमें आया है कार निकोबार से अरविंद और सनगु का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं जुनूनियत फिल्म का ये गीत।

अगला फरमाइश हमें भेजा है मनीष ने हैवलॉक से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं रामैया वस्तामैया फिल्म का ये गीत।

नलेश्वर नगर नॉर्वेल महाराष्ट्र से हमें फरमाइश आया है पीएस नहावकर निर्मला विशाल का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं अपना देश फिल्म का ये गीत।

चराई देव सुनारी से भिकुन मुंडा सुनना चाहते हैं कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गीत।

फिल्म लोफर से इस गीत की फरमाइश की है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने।

अगला फरमाइश हमें आया है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से मोहिनी कल्पित चौहान बेबी गर्वी का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं मिस मैरी फिल्म का ये गीत।

अभी आप आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 3:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilised or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री

0: मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है।

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को ये सूचित किया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के 1-2 स्थानों पर आज और कल 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने तथा साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को ऐसी स्थिति को देखते हुए मछुआरों को 22 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय दोपहर के 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम

चार बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम चार बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए

अभी आप वांटेड, दबंग, सिंघम, सिंह इज किंग, साथिया, सरफरोश, एक दीवाना था, गर्व, आशिकी टू, वीर जारा, फना फिल्म के गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। ख्वाब, ख्वाब सोते वक्त नहीं देखे जाते। कुछ ख्वाब वो भी होते हैं जो इंसान जागते हुए अपने दिल में छुपा कर रखता है। एक बेहतर कल का ख्वाब, अपने नाम से कुछ कर दिखाने का ख्वाब। ख्वाब आँखों में सजाए बैठे हैं, दिल में उम्मीदों के दिए जलाए बैठे हैं। ये दुनिया चाहे जितना रोक ले हमें, हम अपने सपनों को सीने से लगाए बैठे हैं। और याद रखिए, अगर ख्वाब नहीं होंगे तो मंजिलें भी अधूरी लगेगी। इसलिए ख्वाब देखिए, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से ख्वाब से होती है।

कहते हैं इश्क वो किताब है जिसके शब्द तो कम होते हैं पर एहसास बहुत गहरे। इश्क अगर सच्चा हो तो खामोशी भी बातें करती है, और अगर अधूरा हो तो यादें रात जगाती है। दोस्तों, इश्क में जीतना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी किसी को पूरी शिद्दत से चाह लेना ही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि हज़ारों चेहरे में भी वही नज़र आते हैं। दोस्तों, इश्क वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, इश्क वो है जिसके बाद और किसी और का ख्याल ही ना आए।

0: मीडियो वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामने इंजे रोकरहामांग एंगिरे तगा लमकते एलनी मीडियम वेव 438.6 मीटर x 684 किलोहर्ट्स रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्ये निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनकातलोन ही एंगि हरप मिनकातलोन ही तरन मिने महावत कर चोग नलग एलहो निकुन पनम ही एम वी कालीघाट चुलिटिल नमान तका निकोबार इतनर नायका होक अलहांगो जिंगेत इत सट केंद्रो तपह नलग्ञ हेडवाफ ngachawan iptanaranai net ala hangochingiet ita fan kanro tala harap narangka nikubar sekliti landaman anmin altala karana hawa nachu sriwijayapuram sindu chunan kauri ta campbell be ingda tahi sakam tamaju trasin ala hangochingiet ita maju terkenro tepi tahi nalaknya head of waf ngachawan iptanaranai kahok ala hangochingiet ita hawar kanro tepi narang campbell be hek anmin nasaknan kauri altala karana hawa nachu sriwijayapuram Asun ngeran dan tahi ngam cho ngay vi Bharat Sima nang chuh li dilan naman ing da tahi sakam. Ita hewer kan roh tabi tahi nalaknya head of waf. Nga chawan min, ita macho ter kan roh tala hatam narang li dilan naman na chuh Sri Vijayapuram. Nga tiyan in rebin ngam chung, MV North Passage nang asun ngeran na chuh li dilan naman, ita naranay kahuk ala hango chingit. Ita luyanay hang minit na taful kan roh tabi nalaknya head of waf. Nga chawan, ipi e, Ita hing kenro tala saka menerang litilan naman na cu Sri Vijayapuram. Anu nunne min katalun hi ingi harap. Hoi te hangi terasin hi tengi program.
2: Da asu niren na tin ke

0: Tikaknya, Pinky Lawson, apanchan untahui meneha anghi ta asunerin tin ke ingi program. Hoi yang ngatel ngaha angin ngasin tangamu hekin hurej ay hangrongi takasata, ida fan kenro talaharap ngayin.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रही थी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। इसका कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं चंदन दास, रचना है शब्बीर बादर की।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंदन दास की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महलेर उल्लगम। बंगला में शाम 5:30 पर कार्यक्रम सुनिए त्रिधारा। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में महिला कृषक सुश्री प्रियंका हलदार से की गई बातचीत का विषय रहेगा सब्जियों में IPM। जानकारी देंगे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे। संध्या 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए शामे बहार। मौसम की जानकारी चलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाड़ी में 7:30 पर कार्यक्रम सुनिए देश की शान। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश से आते हैं। FM 100.9 MHz पर रात 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स प्रातः 5:55 पर, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा जैविक उर्वरक। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलियानों का यात्रा।

कार्यक्रम सवेरे 6 बजकर 15 मिनट पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा कली शीर्षक पर। रामचरितमानस गान सुनिए सवेरे 6 बजकर 30 मिनट पर। 6 बजकर 50 मिनट पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7 बजकर 15 मिनट पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए देश रागनी। 7 बजकर 15 मिनट पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में कल सवेरे 7 बजकर 30 मिनट पर साहित्यिक दर्पण कार्यक्रम होगा। सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे राधा सलूजा और इकबाल बानो। सवेरे 9 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर विश्वनाथ श्रीखंडे का गायन आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT दिन के 11 बजे। 11 बजकर 30 मिनट पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। दोपहर 12 बजे तेलुगु में कार्यक्रम सुनिए वनिता वाणी। दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर मलयालम में कार्यक्रम होगा शस्त्रलोकम। महफिले कव्वाली कार्यक्रम में दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर कव्वाल होंगे असलम साबरी और साथी। दोपहर बाद 1 बजकर 30 मिनट पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2 बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगी हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3 बजकर 30 मिनट पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। शाम 4 बजकर 30 मिनट पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4 बजकर 40 मिनट पर। 4 बजकर 45 मिनट पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल में शाम 5 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4 बजकर 45 मिनट हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म किंग अंकल से। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया था। इंदिवर के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश का गाया एक गीत। इंदिवर की रचना है, फिल्म का नाम है खुदगर्ज।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए खून भरी मांग फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है नितिन मुकेश और साधना सरगम ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को शांता का
1: और रागिनी का
0: नमस्कार। रागिनी, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम आज के खूबसूरत विचार से करें।
1: हाँ शांता, खूबसूरत विचार है। क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकली अपना पेट कैसे भरती है? छिपकली का भोजन उसकी भांति रेंग कर चलने वाली चींटी नहीं है। उसका भोजन हवा में उड़ने वाले मच्छर, मक्खी और कीट पतंगे हैं। वह उड़ नहीं पाती, फिर भी उड़ने वाले जीवों को अपना भोजन बना लेती है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिका कर रखे तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है।
0: विचारों से तो यही पता चलता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। रागिनी, इसी विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पशुओं को वर्ष में कितनी बार कीड़े मारने की दवा दी जानी चाहिए, ये हमारे किसान साथियों को बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने।
1: पशुओं को वर्ष में कितनी बार कीड़े मारने की दवा दी जानी चाहिए?
0: भाइयों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में शोलबे की रहने वाली महिला कृषक प्रियंका हलदार उपस्थित है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे की गई बातचीत सुनते हैं।
4: प्रियंका जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद।
4: बताइए प्रियंका जी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है आपने?
5: मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और फिलहाल मैं अपने मतलब जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ ही साथ ये जो कृषि प्रोग्राम्स होता है हमारे वहाँ पे गांव पे पंचायत के थ्रू पे बहुत सारा कृषि प्रोग्राम्स होता है, तो अच्छा। मैं घर पे बहुत लंबे समय से बैठी हुई थी तो मैं कभी कभार वहाँ पे जाकर बैठा करती थी और वहाँ के प्रोग्राम्स देखा करती थी। तो उससे मुझे लगा कि ठीक है, जब ऐसी बैठी ही है तो इसको भी किया ही जाए ताकि घर पे थोड़ा सा इनकम और बढ़ पाए और सबको थोड़ी सी मदद भी मिल जाए।
4: बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई के बाद आपने अच्छा सोचा कि आप अपने गांव से ही जुड़ गई। हम ये जानना चाहेंगे कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आपने क्या क्या सीखा?
5: हमारे वहाँ पे जैसे कि गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है, जैसे कि सब्जियों के लिए सब्जियाँ कैसे उगाए जाए, कौन से सीज़न में कौन सी सब्जियाँ उगाया जाना चाहिए, बहुत अच्छा सा ये होगा। और हमारे वहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट मतलब जो केचुआ का खाद होता है उसको भी बनाना सिखाते हैं।
4: अच्छा।
5: और उसको सील करने के लिए भी वहाँ से मतलब बोलते हैं कि आप बनाकर देंगे तो हम आपसे खरीद लेंगे।
4: जी।
5: तो उसका भी उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया। तो मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, फिलहाल अभी मैंने एक बेड बनाया है।
4: अच्छा।
5: अभी उसको ट्राई करने के लिए कोशिश करूंगी।
4: बिल्कुल, देखिए कोशिश करना चाहिए, आगे आना चाहिए, तभी जा करके हम किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। और हम समझते हैं आप जरूर सफल होंगी क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी है और अपने गांव में काफ़ी समय से जुड़ी है। आप अपने घर परिवार में भी देख करके इस कृषि कार्यों को देखती होंगी कि मम्मी पापा भी इस काम से जुड़े हैं।
5: जी जी, मेरे जो पिताश्री हैं वो भी मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे काम के अलावा भी घर पर जो पेड़ पौधा, तो उनको देखकर भी हमें बहुत सारा प्रेरणा मिलता है कि चलो कुछ ना करो तो कुछ करते रहो।
4: खाली नहीं बैठना चाहिए,
5: मतलब कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि हाँ थोड़ा फैमिली को भी सपोर्ट हो जाए, खुद के लिए भी कुछ अच्छा हो। खाली बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसीलिए तो ये बेटर आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है
4: कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जो तमाम जो युवा

0: भाई बहन हैं जैसे आपकी तरह घर पर बैठे होंगे, तो उनसे जब आप मुलाकात करती हैं कभी अपने गांव में मिलती है, तो उनको भी आप ये प्रेरणा दे सकती हैं?
1: जी ज़रूर। एक्चुअली मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को ये बोलती भी हूँ कि अभी जैसा कि कंडीशन चल रहा है, सभी युवाएं जो है जॉब के लिए भाग रहे हैं, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि ठीक है, अपना पढ़ाई जो है पढ़ाई करते रहो, लेकिन साथ ही साथ कुछ करते रहो ताकि आपको अपने फैमिली पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। एज ए लेडीज़ को
0: जी
1: ज़्यादातर
0: जी
1: प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता है अपने फैमिली से, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि खुद का जो होना चाहिए वो ज़्यादा बेटर है किसी से
0: बेटर है,
1: मांगने से, तो इसीलिए
0: बहुत ही
1: मैं उनको
0: अच्छी
1: बोलती हूँ।
0: सोच है। तो अपने दोस्तों को भी आप ये शेयर करती है।
1: जी,
0: मम्मी पापा का कितना सपोर्ट आपको मिलता है?
1: मेरे मम्मी पापा जो है बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है, वो कोई भी चीज़ में मुझे ना नहीं बोलते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ये करना है, अगर उनके पास इनकम ना भी हो तो भी बोलते हैं ठीक है, मैं कहीं से अरेंज करने का कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तुम ट्राई करते रहो करके।
0: बिल्कुल।
1: उनका हमेशा से पीछे ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिसके वजह से हम लोग अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं फिलहाल।
0: प्रियंका, स्वयं सहायता समूह से भी आप जुड़ी हुएंगी?
1: जी नहीं, मैं जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है उनसे जुड़ी है।
0: अच्छा
1: उनका भी कुछ ऐसा है कि एक फैमिली से शायद
0: अच्छा
1: एक ही
0: एक मेंबर।
1: जन जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ पॉलिसी है उनका। तो मतलब मेरी मम्मी जो उनसे सीख के आते हैं, तो अक्सर मेरी मम्मी मुझसे वो शेयर करती है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का, कोकोनट शेल से उन
0: शेल
1: लोग,
0: से जो जी
1: हाँ जी, उनसे बहुत कुछ बनाकर एयरपोर्ट में या कोई भी एम्पोरियम में वहाँ पर सेल करते
0: जो
1: हैं।
0: जैसे कहीं पर एग्जीबिशन लगता है तो
1: जी
0: वहाँ पर भी आप सेल कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी वहाँ पर भी सेल करते हैं, तो मैंने अपनी मम्मी से वो भी सीखा है। उनके साथ साथ मुझे भी ये चीज़ आता है, और उनको करके देने से क्या, उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है।
0: बिल्कुल, मिलजुल कर कोई काम को करने से वो काम आसान भी हो जाता है और घर पर ही आपका जो इनकम है वो घर पर ही आता
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो चलिए, अच्छा लगा आपसे सुनकर कि आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने घरों में अपने मम्मी पापा के साथ और अपने जो घर के जो कृषि कार्य हैं उनसे जोड़कर काम करती है। आप तमाम युवाओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि मतलब कोशिश करते रहो, लेकिन खुद का भी कुछ करते रहो। खाली बैठने से अच्छा है कुछ करते रहो।
0: आज देखिए ना सर, सरकारी नौकरी की तलाश में बच्चे भाग रहे हैं,
1: जी,
0: तो कहाँ तक सही है?
1: मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है,
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारे बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, बहुत जन हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो यहीं पे रहकर खुद से पढ़ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं यहीं से। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि फेयर होना चाहिए, जो कैपेबल है उनको जॉब मिलना चाहिए, ठीक है, जिनको नहीं मिला लेकिन वो भी कुछ कुछ करे
0: कुछ करें।
1: ताकि खुद का जो है रोज़गार का कुछ ना कुछ तो हो कि किसी पे कुछ भी डिपेंडेंट ना होना पड़े।
0: देखिए ना, आजकल कई तरह के हमारे जो इंडस्ट्री की तरफ से कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं,
1: जी
0: या अपने गांव में ही कोई छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। जैसे आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे अपने ही गांव की सेवा कर सकते हैं।
1: जी जी जी
0: तो प्रियंका जी, आज आप कार्यक्रम में आई और बहुत ही अच्छे विचार अपने जो तमाम जो कृषक भाई बहन हैं उनसे साझा की। आपका कार्यक्रम में आने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार आप कुछ नया कर और अपने गांव के लिए कुछ नया करेंगी, नया सोचेंगी। उसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
1: जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आके अपना जो विचार जो है उसको सबके साथ शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप प्रियंका हलदार से की गई बातचीत सुन रहे थे।
0: रागनी बहुत ही दूर दराज का इलाका है शोलबे गांव, और हमारी बहुत सारी कृषक महिला जो है अपनी खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा करती है और बहुत मेहनत लगन से वो काम करती है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप भी इनकी बातचीत सुनकर अवश्य ही इनसे लाभान्वित हुए होंगे।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: रागनी, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है गीत संगीत का।
2: किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत का आनंद तो आपने ले लिया। अब आइए साथियों, हम मुलाकात करते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार पांडे के साथ, जिनके साथ आज बातचीत का विषय है सब्जियों में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन यानी कि IPM। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।
1: सब्जियों में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन यानी IPM के बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि IPM के बारे में हम आपसे पूछें, यहाँ पर अक्सर किसान भी यही कहते हैं, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अंडमान में कीड़े और बीमारियाँ सब्जियाँ या जो भी दूसरी फसलें हैं इसमें बहुत लगती है, तो इसका क्या कारण है?
2: सर, एक्चुअली जो यहाँ का जो पर्यावरण है जिसमें जो है टेम्परेचर का रेंज जो है 25 to 30 degrees, नाइट में ड्यू का फॉर्मेशन जो होता है वो जो है कीड़े और बीमारी के लिए जो है एक स्वर्ग के समान है। इस वजह से यहाँ पे जो है हमेशा बीमारी और कीड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा चीज़ जो है, आजकल हाइब्रिड जो का प्रचलन हो गया है तो मोनोक्रॉपिंग हो रहा है, एक ही प्रकार की वैरायटी जो है सभी फार्मर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर करेला कोई ग्रो कर रहा है तो वही वैरायटी सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, करेले का या जिस भी सब्जी का जो प्रचलन हो गया है वो एक ही प्रकार का सब्जी ज़्यादा एरिया में ग्रो करने से वो बीमारी का फैलाव बढ़ जाता है और उसका प्रकोप भी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है यहाँ बीमारी फैलने का। सर,
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक तो मौसम अनुकूल है और दूसरा जो कृषि की जो प्रणाली आजकल विकसित हो रही है वो भी कीड़े और बीमारियों को बढ़ावा दे रही है, तो आप लोग विशेषज्ञ के तौर पर किसानों को क्या सलाह देते हैं कि IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसके तहत क्या कुछ किया जाना चाहिए? पहले तो ये बताइए कि IPM है क्या?
2: एक्चुअली जैसे हमारा जो IPM टेक्नोलॉजी है, इसको जो एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन के बारे में हम बोलते हैं, इसका मतलब है एकीकृत। मीन्स जो है सर, पुराने सिस्टम में एक पुराना सिस्टम है, एक जो है मीडियम सिस्टम है और एक आधुनिक सिस्टम है। तो जो देखा गया कि कीड़ा और जो बीमारी है वो किसी एक अप्रोच को फॉलो करने से उसका नियंत्रण सही नहीं हो पा रहा है। तो देखा गया कि अगर हम तीनों का एक साथ करें, जैसे जो पुराना पद्धति है, जो कल्चरल प्रैक्टिस जो हमारे पुराने जो जनरेशन के लोग जो किया करते थे वो तरीका, और कुछ जो है हमारा पुराना तरीका के साथ मिडिल जो तरीका है और कुछ आधुनिक पद्धतियाँ, इन तीनों पद्धति में हमारा जो है पारंपरिक मेथड जो होता है उसका मैनेजमेंट, दूसरा जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है, उसके बाद से जो है केमिकल मैनेजमेंट है, और जो है मॉडर्न जो है अप्रोच जो है इन तीनों को इंटीग्रेट करके, और हमारा मकसद यही है कि रसायन का प्रभाव कम हो और जो है उसका लास्ट में प्रयोग करें यदि उसका बचाव संभव ना हो, तो ये एकीकृत हमारा कीट और रोग प्रबंधन है।
1: तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, तो आप लोग किसानों को क्या सलाह देते हैं, कैसे शुरुआत से ही वो विभिन्न उपाय करें, जैसे आपने कहा कि परंपरागत उपाय शुरू में कर लें और फिर जो आजकल जो आप लोग विकसित कर रहे हैं उन उपायों को भी अपनाएं कि कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो, अगर हो भी तो उनका प्रबंधन कुछ हद तक हो जाए।
2: जी एक्चुअली सर, जब हम फार्मर को बोलते हैं कि अगर आप जो सब्जी उगाने जा रहे हैं तो कुछ दिन पहले आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, जब आप प्लानिंग करते हैं उसी समय बताइए, तो उस समय हम लोग सबसे पहले यही बोलते हैं सर कि जो अगर जो सब्जी हम नर्सरी के थ्रू मैनेजमेंट करते हैं, जैसे पौधा का पौध तैयार करना फिर उसके बाद से खेत में डालना, तो पहला मैनेजमेंट हमारा जो है पौध तैयार करने से होता है। पौध तैयार करने में हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा फार्मर है एक सर्टिफाइड सीड जो है ले, जो है उसका एजेंसी हमारा कैरी भी हो सकता है और जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, बहुत सारा जो अच्छे वैरायटी के सीड जो है वो बाहर से लाते हैं सर्टिफाइड है, उनका प्रयोग करें, और जो लोकल मार्केट में कई बार अनसर्टिफाइड सीड होता है जैसे मेनलैंड में कोलकाता के मार्केट से, चेन्नई के मार्केट से लेके आ जाते हैं, ये सीड ना लाए, ये तो बहुत सारे बीमारियों को भी लेके आते हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और जल्दी ही बड़े होने पर रॉट हो जाते हैं।

0: तो सबसे पहले तो हम बीज के बारे में बताते हैं कि अच्छा बीज लाइए। दूसरा हम बीज शोधन के बारे में बताते हैं। इसमें FIR मेथड है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बायो कंट्रोल तीनों को मिला के ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद उसको हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो पौधशाला है उसका मैनेजमेंट जरूरी है। पौधशाला जो तैयार करता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि सॉयल सोलराइजेशन किया जाए, जिससे मिट्टी के अंदर जो भी कीटाणु है उनके अंडे हो और बीमारियों के जो स्पोर है वो खत्म हो जाए। और ये भी हम प्रीफर करते हैं कि जो हमारा जो नर्सरी होता है वो थोड़ा ऊपर के लैंड में रखें, अगर क्योंकि उसमें पानी न पहुँचे। हम इरिगेशन दे के अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारा इफेक्टिव नर्सरी है। उसमें हम बायो कंट्रोल जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और बहुत सारे बिवेरिया जो है इसको हम प्रयोग करके करने से एक तो हमारा नर्सरी हमारा हेल्दी होगा। जी सर,
1: तो यानी नर्सरी से ही ये जो काम है शुरू हो जाना चाहिए। आपने कहा कि जो बीजों से बीमारियां पहुंचती हैं पहले उस पर रोक लगा दें, और नर्सरी में जहाँ तक क्योंकि छोटा इलाका है तो मिट्टी का प्रबंधन भी वहाँ कर सकते हैं, तो मिट्टी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको भी पौधों के स्तर पर रोका जाए। अब उसके बाद फिर मुख्य खेत में जाते हैं।
0: जी जैसे मैंने बोला कि एक बीज से आता है वहाँ नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारा पेड़ जब मेन खेत में मेन फसल में हम डाल जाते हैं मुख्य फसल, तो वहाँ पे दूसरी बीमारी शुरू होती है। दूसरी बीमारी में एक तो होता है जड़ संबंधित बीमारी, अगर हमारा नर्सरी सही नहीं है तो वहाँ शुरू होता है। तो उसको मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ट्राइकोडर्मा बहुत इफेक्टिव है। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास है और कैरी द्वारा डेवलप किया गया एक बायो कंसोर्सिया है, वो मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है। बहुत सारा बैक्टीरिया मिलाया गया है जो ग्रोथ प्रमोशन भी काम कर रहा है और उसको भी हम जो है मिट्टी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका है कि हम कंपोस्ट है या फार्म यार्ड मैन्योर है या पोल्ट्री मैन्योर है उसको जो है सर 1 kg पाउडर को या लिक्विड है 250 ml या 1 kg का पाउडर है उसको 50 kg जो है कंपोस्ट में, जैसे मैंने बोला फार्म यार्ड जो भी है डिग्रेडेड कंपोस्ट में मिला के रख लेते हैं। फिर हम खेत में ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, या तो हम उसको जहाँ जहाँ पे थल्ला बनाते हैं पौध डालते हैं वहाँ पे भी एक एक मुठा दो दो मुठा डालने से वो अच्छा काम कर सकता है। एक तो हमारा ये स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज हमारा स्टार्ट होता है जहाँ पे जो है हमारा पौध का फ्लावरिंग स्टेज आता है। फ्लावरिंग स्टेज पे अलग प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है और अलग प्रकार के जो है बीमारियाँ भी लगना शुरू होती हैं। यदि हम इसमें सबसे पहले प्रीफर करते हैं हम कैनोपी मैनेजमेंट, जैसे जो पेड़ से पेड़ की दूरी मेंटेन करना है, प्रॉपर उसमें सनलाइट आना जरूरी है। अगर सनलाइट आना आएगा नहीं तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि ड्यू का फॉर्मेशन ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा होने से उसके अंदर जो है कीड़ों का भी संख्या बढ़ेगा और बीमारी के स्पोर बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। धूप आने से जो है उनका बहुत सारा निदान हो जाता है। कीड़ों को जस्ट फ्लावरिंग स्टेज में मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि बॉर्डर क्रॉप लगाएं। बॉर्डर क्रॉप में हम मक्का लगा सकते हैं, सनफ्लावर लगा सकते हैं और सोरगम लगा सकते हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि जो हम क्रॉप सोइंग करते हैं उससे जो है 15 दिन पहले अगर हम बॉर्डर क्रॉप लगा देते हैं तो जब हमारे खेत में फ्लावरिंग आता है उससे पहले जो है फ्लावरिंग इनका हो गया होता है, मक्का का और इस मक्का हो गया या सनफ्लावर हो गया। इनमें क्या होता है परागकण बहुत ज़्यादा होता है तो जितने कीड़े हैं उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। और हमारा मेन फसल जो जिस समय बैंगन का फ्लावरिंग हो रहा है या मिर्ची का फ्लावरिंग हो रहा है या और कद्दू वर्गीय फसल उनका फ्लावरिंग हो रहा है तो कीड़े वहाँ ना जाके हमारे 50% कीड़ा वहाँ चले जाते हैं। और इनका एक और गुण है कि उनके अंदर जो नेचुरल जो प्रिडेटर है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं पहले से, तो वो भी खाने का काम कर देते हैं और दूसरा काम जो है हमारा कीड़ा उस पर चला जाता है तो हमारा जो फसल है वो स्केप कर जाता है। स्केप करने से हमारा कीड़ा का प्रभाव बच जाता है, हमें केमिकल का स्प्रे भी नहीं करना पड़ता है। और उसमें अगर हम यूजुअली कुछ फेरोमोन ट्रैप्स हम लगा सकते हैं, अगर सिंपल में देखा जाए नीम ऑयल स्प्रे करने से बहुत अच्छा चीज़ है। लाइट ट्रैप जो फूड ट्रैप है वो डालने से कीड़ा जो बचेगा कीड़ा वो उसके अंदर चला जाएगा। कुछ कीड़ा जो है हमारा जो है सनफ्लावर और मेज के ऊपर चला गया और नीम ऑयल हल्का सा स्प्रे कर देने से हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग स्टेज में हम बचाव कर सकते हैं।
1: और जैसे कि जैसे ही फल आता है तो फिर चूसने वाले कीड़े बहुत आ जाते हैं, तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से फेरोमोन ट्रैप वगैरह बहुत इफेक्टिव है।
0: बिल्कुल एक्चुअली जब फल आना शुरू होता है, जब फ्लावर के समय अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो कीड़ों की संख्या बढ़ेगी नहीं, और जैसे भी फल आएगा उस समय जो हमारे कीड़ों की संख्या कम रहेगी तो हमें स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली केवल वेट करते रहे कि हमारे फल में होल होने लगा तो स्प्रे करना है तो वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। उस समय एक ही मैनेजमेंट है केमिकल का स्प्रे करना, और केमिकल का स्प्रे जो है खाने योग्य चीज़ों में अच्छा नहीं है। तो बेस्ट है कि हम बचाव कर सकते हैं कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा। और भी हमारे पास जो है बहुत सारा, जैसे बैगन है, बैगन के पास जो पत्तियाँ हैं उसमें हमारा ट्राइकोग्रामा जोपेनिकम है, बहुत सारा उनका वैरायटी डेवलप किया गया है और ये ट्राइकोग्रामा हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल है और जो है IPM डिपार्टमेंट है उनके पास भी अवेलेबल

0: है उसको जो है हम टोटल सर 5 लाख जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, जिसको 5 रिलीज डालते हैं। फर्स्ट रिलीज में आपका जो है 15,000 के आसपास, सेकेंड में 2.5 लाख के आसपास। इस तरीके से स्ट्रेप है, स्ट्रेप लगाने से वो जो है नेचुरली उनको जो है कंट्रोल करते हैं, इस
1: चूसने वाले कीड़े।
0: चूसने वाले कीड़े। इसके साथ साथ हमारे पास जो है एनपीबी वायरस भी है, उनको अगर स्प्रे करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे कीड़े के गट्स में जाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और उसमें जो वायरस है वो इन्फेक्टिव वायरस होता है, जैसे कीड़े एक दूसरे के टच में आते हैं उनके पास भी फैलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास बैसिलस थुरोजेंसिस नाम का जो है एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, जो भी बहुत अच्छा है, मार्केट में अवेलेबल भी है, और जो है अंडमान हमारा ऑर्गेनिक में जा रहा है, तो इसका प्रयोग करने से भी बहुत सारे कीड़ों का नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सही समय पे अगर शुरू से ही हम अगर कॉन्शियस रहेंगे तो रसायन से हम बच सकते हैं और अच्छा से इसका प्रयोग कर सकते
1: सकते हैं।
0: हैं।
1: और डॉक्टर साहब, आप लोग बताते हैं कि आखिरी उपाय के रूप में रसायन का प्रयोग करना है, और इसके लिए कुछ एक आर्थिक हानि स्तर या ETL लेवल बताते हैं, ये देख के ही रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए आखिरी उपाय के रूप में।
0: देखिए आखिरी उपाय, अभी तक तो हमने बायोलॉजिकल या कल्चरल और जो भी पद्धति हमने बता दिया, लास्ट में हम देखते हैं अगर हमारे कीड़े का रोकथाम नहीं हो तो हम रासायनिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे किसान का नुकसान होने लगे, क्योंकि आजकल 250 ml भी 800-900 बहुत ज़्यादा आता है, मैन पावर का यूज़ करना ये सब बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, स्टिकी ट्रैप होता है वो फील्ड में लगा के रखते हैं वो मॉनिटरिंग के लिए, अगर व्हाइट फ्लाई है, कुछ इंसेक्ट है उससे पास होते हैं तो लोग उस पर चिपक जाते हैं। तो रेगुलर अगर फार्मर उसको मॉनिटर करता रहेगा, देखेगा आज 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर जो है देखते हैं अगर 10% से ज़्यादा या 25% से ज़्यादा उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस समय जो है हम उसको एक एक दो स्प्रे के लिए हम वारंट करते हैं। वो भी अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है तब, उस समय कोई सेफली इंसेक्टिसाइड जो है हम यूज करते हैं उसको रिकमेंडेड डोज के हिसाब से, तो वो अच्छा है, बेटर है अगर नीम ऑयल स्प्रे करने से हद तक जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि जहाँ तक IPM का सवाल है, तो हर एक स्तर पर, हर एक स्टेज में किसानों को थोड़ा सावधानी बरतनी है। और जो जैसे आपने बताया, बायोलॉजिकल है, मैकेनिकल है, कल्चरल है, जैविक विधि है, जो कर्षण विधियाँ हैं, और इन सब विधियों को एक साथ मिलाकर करें तो बहुत हद तक प्रबंधन किया जा सकता है। नियंत्रण ना सही, प्रबंधन तो हो ही सकता है। तो डॉक्टर पांडे, आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: किसान साथियों, अभी आपने डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से सब्जियों में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन विषय पर बातचीत सुनी। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को इसे ज़रूर फ़ायदा होगा। कुछ जो तकनीकी जानकारी होती है वो वैज्ञानिकों द्वारा ही वो प्राप्त कर सकते हैं। रागनी, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने अपने किसान भाइयों से पूछा था कि पशुओं को वर्ष में कितनी बार कीड़े मारने की दवा दी जानी चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता दो।
3: हाँ शांता, किसान साथियों, प्रश्न का सही उत्तर है 2 बार पशुओं को मानसून शुरू होने से पहले और मानसून के बाद कीड़े मारने की दवा दी जानी चाहिए।
2: उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति।
4: नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म रॉकी से। आवाज़ें थी हिमेश रेशमिया और अमृता काक की, समीर के शब्द थे। आइए अब सुनते हैं प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है जुबीन ने, तर्ज बनाई है प्रीतम ने, मयूरपुरी की रचना है।

फिर हेरा फेरी। इस फिल्म में सुनते हैं कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और आर्या को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

अलका याग्निक और शाम का गाया अब सुनिए लव के चक्कर में फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है परवीन भारद्वाज ने, संगीत दिया है दब्बू मलिक ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोता हूँ, अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30

पर कार्यक्रम सुनिए देश की शान। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, चित्रपट संगीत, और रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, संदेश ही आते हैं। FM 100.9 MHz पर रात्रि 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा जैविक उर्वरक। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा कली शीर्षक पर। रामचरितमानस गान सुनिए सवेरे 6:30 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए देश रागनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में कल सवेरे 7:30 पर साहित्यिक दर्पण के तहत अंजलि कुमार से काव्य पाठ आप सुनेंगे। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे राधा सलूजा और इकबाल बानो। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर विश्वनाथ श्रीखंडे का गायन आप सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT दिन की 11 बजे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में कार्यक्रम सुनिए वनिता वानी। दोपहर 12:30 पर मलयालम में कार्यक्रम होगा शस्त्र लोकम। महफिले कव्वाली कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10। कव्वाल होंगे असलम साबरी और साथी। दोपहर 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम सुनिए हेलो डियर फ्रेंड्स। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पहाड़ों की शाम। तमिल में शाम 5 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। 5:30 पर बंगला में प्रसिद्ध गीतों का आप आनंद ले पाएंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर बी पांडे से की गई बातचीत का विषय रहेगा द्वीपों में शकरकंद की खेती। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दर्द भरे नगमे संध्या 6:30 पर। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 होने वाले हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचे। प्रधान आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रारंभ 2026 कार्यक्रम में नए आयकर अधिनियम के प्रमुख बदलावों पर प्रकाश डाला गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रात्रापुर परियोजना में निर्माण गुणवत्ता पर सांसद ने उठाए सवाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक के सम्मान में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में विदाई समारोह आयोजित किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। यह श्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के इटली आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं। पोर्टब्लेयर स्थित आपदा भवन के सम्मेलन कक्ष में आज नए आयकर अधिनियम 2025 तथा नए आयकर नियम 2026 पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान आयकर आयुक्त 1 कोलकाता के पोर्टब्लेयर स्थित कार्यालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान आयकर आयुक्त मनीष कनौजिया IRS ने की। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री कनौजिया ने नए आयकर अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं तथा आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में इसमें किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। इसके बाद श्री विजयपुरम के संयुक्त आयकर आयुक्त अर्णब सरकार ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से नए कानून में किए गए प्रमुख परिवर्तनों की विस्तार से जानकारी दी। प्रधान आयकर आयुक्त ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों से संवाद भी किया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम का समापन आयकर अधिकारी TDS पोर्टब्लेयर श्री तपस गांगुली द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षा के परिणामों के पुनर्मूल्यांकन एवं अंकों के सत्यापन से संबंधित सूचना जारी की है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट CBSE आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय चरण में विद्यार्थी अंकों के सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल शाम 5:30 बजे से लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय भारतीय श्वानों का दत्तक ग्रहण एवं नैतिक पालतू प्रजनन रहेगा। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा अनुभाग रंगाचांग की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवा रानी स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान दर्शक इन फोन नंबर 2456662 तथा 2447455 पर कॉल कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, सांसद और विदाई समारोह। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी FM रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रातरपुर स्थित आवास परियोजना में कथित अनियमितताओं, विलंब, निम्न स्तरीय निर्माण तथा लाभार्थियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले को लेकर

0: सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस पत्र की प्रति उन्होंने गृह मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की है। सांसद ने कहा कि इस परियोजना में 213 आवास इकाइयां ब्लॉक ए, बी एवं सी में शामिल है, जिनमें ब्लॉक ए और बी का लगभग 80% कार्य पूर्ण है, जबकि ब्लॉक सी में केवल लगभग 20% प्रगति हुई है। 3 मई को बिना मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता, आंतरिक सड़क एवं स्ट्रीट लाइट के अधूरे घरों को सौंपने का प्रयास किया गया, जिसे लाभार्थियों के विरोध के कारण रोका गया। सांसद ने 4 मई को स्थल का निरीक्षण कर पाया कि निर्माण में कई कमियां है। लाभार्थियों ने यह भी बताया कि मकान अधूरे होने के बावजूद अप्रैल 2026 से ईएमआई की वसूली शुरू हो चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल के सम्मान में आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पूर्ण औपचारिक सम्मान के साथ विदाई परेड का आयोजन किया गया। यह आयोजन उनके स्थानांतरण के उपरांत दिल्ली वापसी के अवसर पर किया गया। श्री धालीवाल ने द्वीप समूह में 21 महीने तक अपनी सेवा प्रदान की। इस अवसर पर श्री धालीवाल ने पुलिस बल के सभी कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने कार्यकाल को स्मरणीय बताया और पुलिस बल के सभी कर्मियों की सराहना की। दक्षिण अंडमान स्थित डीएफओ कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में पौष अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक वन संरक्षक शरद के स्वागत संबोधन से हुई। इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित पौष प्रशिक्षक स्मृति लक्ष्मी विवेक द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न से संबंधित मामलों में पौष अधिनियम के महत्व, उसके नियमों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी दी। सत्र के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी एवं स्टाफ ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएफओ विम्बरलीगंज अश्विन जे परिहार ने निजी संस्था का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष वी के मरियम बीबी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। समेकित क्षेत्रीय केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित पुनर्वास एवं संबद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी सूचना के अनुसार द्वीप समूह को प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है। अभ्यर्थी नियमित रूप से CRC अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा NIE PMD की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेलुलर जेल में आयोजित होने वाला ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम अगली सूचना तक निलंबित रहेगा। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा गर्ल्स स्कूल पार्किंग परिसर में मोबाइल फूड वैन, ट्रक संचालन जैसे स्थानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन EOI आमंत्रित किए गए हैं। EOI से संबंधित नियम एवं शर्तें वाले दस्तावेज ई निविदा से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। प्रधान आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रारंभ 2026 कार्यक्रम में नए आयकर अधिनियम के प्रमुख बदलावों पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रातरापुर परियोजना में निर्माण गुणवत्ता पर सांसद ने उठाए सवाल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक के सम्मान में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जुलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान एवं निकोबार तट के आसपास तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को आज से 22 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है।

कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी कल बुधवार 20 मई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलकर मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर जाएगा। यह जलयान अगले दिन 21 मई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबी शहीद द्वीप स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 20 मई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप स्वराजद्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इस जलयान की वापसी अगले दिन 21 मई को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी रानीचंगा कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा तथा 4:30 पर ये जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल 20 मई को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान अगले दिन 21 मई को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं।

गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 112-3192-2321-00, 3192-233-077 और 3192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म तकदीर से। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और साथियों ने। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आनंद बख्शी के बोल थे। आइए अब सुनते हैं फर्स्ट लव लेटर फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर के मधुर स्वर में। अनजान के शब्द हैं, बप्पी लहरी ने तर्ज बनाई है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 19 मई है और आज के दिन विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, खेलों में ईमानदारी, सम्मान

और नैतिकता के महत्व को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों और लोगों को यह संदेश देना है कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण निष्पक्षता और खेल भावना होती है। खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अनुशासन, भाईचारे और सम्मान का प्रतीक है। फेयर प्ले हमें सिखाता है कि नियमों का पालन करते हुए सच्चाई और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे मैदान हो या जीवन। ईमानदारी और सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को महान बनाती है। यह दिवस खिलाड़ियों के साथ साथ समाज को भी प्रेरित करता है कि सफलता हमेशा सही मार्ग से ही प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही आज के दिन हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, आलोचक और विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि भी है। इस दिन साहित्य जगत उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करता है और उनके योगदान को नमन करता है। उन्होंने हिंदी साहित्य, भारतीय संस्कृति और इतिहास को नई दृष्टि प्रदान की। उनकी रचनाओं में ज्ञान, संवेदना और भारतीय परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में बना भट्टा की आत्मकथा और अनमदास की पोथा और कबीर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। उनका साहित्य आज भी विद्यार्थियों और पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। अब आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम देश की शान में।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा की आत्मा केवल उसकी कहानियों में नहीं बल्कि उसके गीतों में भी बसती है। पुराने दौर की फिल्मों में गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे बल्कि वे भावनाओं, प्रेम, दर्द और जीवन के दर्शन को शब्दों में पिरोते थे। इन गीतों को अमर बनाने में संगीतकारों के साथ साथ गीतकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे ही महान गीतकारों में एक नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है, मजरूह सुल्तानपुरी। उनकी लेखनी में उर्दू शायरी की मिठास और दिल को छू लेने वाली सादगी थी। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर बसे हुए हैं। वे हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा गीतकारों में थे जिन्होंने अपने शब्दों से संगीत को अमर बना दिया।

मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उनका असली नाम असरार उल हसन खान था। उनके परिवार ने उन्हें पारंपरिक शिक्षा दिलाई जिसमें उर्दू, अरबी और फारसी का अध्ययन शामिल था। बाद में उन्होंने यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई भी की और कुछ समय तक हकीम के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका मन शायरी और साहित्य में बसता था। एक मुशायरे में जब उन्होंने अपनी गजल सुनाई तो लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। प्रसिद्ध शायर जिगर मुरादाबादी भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने मजरूह को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यहीं से उनका सफर साहित्य और संगीत की दुनिया की ओर मुड़ गया।

मुंबई पहुंचने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी को शुरुआत में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी शायरी और लेखन शैली ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें पहली बड़ी सफलता फिल्म शाहजहां से मिली, जिसके गीतों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उनकी प्रगतिशील सोच के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी लेखन किया, जिसके कारण उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन इन संघर्षों ने उनकी सोच और लेखनी को और मजबूत बना दिया और धीरे धीरे वे हिंदी फिल्म जगत के सबसे सम्मानित गीतकारों में शामिल हो गए।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके गीतों में प्रेम, दर्द, खुशी और जीवन की गहराई साफ दिखाई देती थी। उन्होंने कयामत से कयामत तक, तीसरी मंजिल, अभिमान, दोस्ती और ज़माने को दिखाना है जैसी फिल्मों में यादगार गीत दिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, और चुरा लिया है तुमने जैसे गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है। उनकी लेखनी में सरल शब्दों के माध्यम से गहरी भावनाएं व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। यही कारण है कि उनके गीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहे।

अपने शानदार योगदान के लिए मजरू सुल्तानपुरी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें सन 1965 में फिल्मफेयर अवार्ड मिला और 1993 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले गीतकार बने और 24 मई 2000 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी लिखी पंक्तियां आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चे शब्द कभी पुराने नहीं होते। मजरू सुल्तानपुरी केवल एक गीतकार नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सिनेमा की आत्मा में बसने वाले ऐसे शायर थे जिनकी लेखनी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और दोस्तों, यकीनन ही मजरू सुल्तानपुरी हमारे भारत देश की शान है। एक

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं गाइड फिल्म का एक गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शैलेंद्र की रचना है, एस डी बर्मन का संगीत है।

0: अब सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म शागिर्द में जॉली मुखर्जी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: दिल

अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। इस गीत को संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बॉम्बे का बाबू फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। मजरू का लिखा ये गीत है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न हुआ।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर

0: एग्जीक्यूटिव ओपन के लिए कुल पद हैं 28, अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद, 19 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है और विभागीय के लिए 3 पद है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। ग्रुप सी में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 155, अनारक्षित वर्ग के लिए 66 पद, 65 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद, न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ग के लिए 7 पद, भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के लिए 1 पद होगा। कांस्टेबल बैंड्समैन के लिए कुल पद है 4, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 10, अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, 4 पद ओबीसी वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। फॉलोवर कारपेंटर एग्जीक्यूटिव केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर कुक एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 13, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद, 5 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। फॉलोवर टेलर एग्जीक्यूटिव कुल पद है 1 जो अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर बार्बर एग्जीक्यूटिव कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर वाशरमैन एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 3, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
0: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: श्रोताओं, अब सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव कान ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे

0: के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year.

0: I am Devons of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
3: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security.

0: 만탄.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड

0: हाल में शुरू हुई ECLGS योजना को MSME के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर NPA संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया, या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
1: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं, 30% से ऊपर निर्यात में, 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो।
0: जी
1: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है, उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो ECLGS है, इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है, उसमें हमें देखने को मिले।
0: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
1: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी MSME का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है।
0: जी
1: सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, इन ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है।
0: जी
1: तो अब के समय में JAM के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है, वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है, लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन MSME के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी, और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी,
0: जी
1: अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पे सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
0: शिशिर जी, अभी आपने जैम की बात की, तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर लें, MSME संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से MSME इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
1: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TRDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि MSME जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं
0: जी
1: उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए, और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और
0: जी
1: ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं, आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी।
0: जी
1: इसका फायदा क्या है, और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर MSME को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है, और इन MSME को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
0: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और MSME को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से

0: लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है। और आने वाले वर्ष का टारगेट, यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलके $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
2: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा

0: कंपनियों को वर्ष 2021 एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
1: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
0: आसानी होती है।
1: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7-7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
0: तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
1: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है
0: जी।
1: अगर आप एक महिला उद्यमी है तो स्टैंड अप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40%, 45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
0: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
1: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का। अब ये ECLGS 5 की बात

0: क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ न कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास हैं, जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दें। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का, अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता कि आप कौन है, और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है, तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता
1: है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं, अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% एमएसएमई का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: मंथन।
3: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं।

आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए श्रोता इस कार्यक्रम को यदि आज ही सुन रहे हैं तो उन्हें हम बता दें अपना व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप भी अपने पसंद के गाने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाएं। तो देर ना करें, जल्दी से नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000।

तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे हमें भेजा है असम से रोमेश पात्रो, रानू पात्रो और लकी जी ने। ये सुनना चाहते हैं लाडला फिल्म का गाना। तो चलिए सुनिए आपके पसंद का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश की है ब्लॉक से मनीष जी ने। ये सुनना चाहते हैं रामैया वस्तावैया फिल्म का ये गाना।

चलते चलते सुनते हैं इस फिल्म का गाना। और इस गीत के लिए हमें मैसेज किया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय जी ने। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: आन मिलो सजना, इस फिल्म के लिए हमें व्हाट्सएप किया है। ग्राम पंजौलिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चौंसलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चौंसलिया ने।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

अब सुनिए फिल्म नाइट इन लंदन का एक गाना, और इस गीत को पसंद किया है महजबीन अटलांटा पॉइंट पोर्ट ब्लर से।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म गुमराह से, और इस गीत के लिए हमें व्हाट्सएप किया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहार ने।

श्रोताओं, अब चलते चलते हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान एवं निकोबार तट के आसपास तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। अतः मछुआरों को आज से 22 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:28.35 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: जो बदलना चाहता है वही आगे बढ़ता है। समय के साथ खुद को बेहतर बनाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति नई सोच अपनाता है और अपनी कमियों को सुधारने का साहस रखता है वही जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। परिवर्तन कठिन जरूर होता है लेकिन यही बदलाव भविष्य को उज्जवल बनाता है।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।